खामोशी से समंदर की गहराई में सफर करने वाले किसी आले का तस्वर करें। बिना इंसान के खुद मुख्तार तौर पर वो अपने हदफ पर मरकूज। तुर्किया इन गहराइयों में भी अपना असर सो कायम करने की राह पर गामसन है। सामने जब दिफाई सनत की बात आती है तो तुर्की ने हाल ही बरसों में जो इकदाम उठाए हैं वो तजारती मेले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हैं। सहा एक्सपो 2026 जो कि हाल में इख्तिताम पजीर हुई है ने न सिर्फ निजाम दस्तशुदा मादों की न सिर्फ एक ताकतवर तस्वीर पेश की है बल्कि इस चीज का भी मुशाजारा किया है कि तुर्किया दिफाई शुबे में किधर जा रहा है। पहली चीज, तुर्किया की ज़रिया प्लेटफॉर्म और निजाम तैयार करने की स्लाइड शायद पहली बार इस तरह ठोस अंदाज में मंजरेआम पर आई है। शुमाल कब्रस से तुर्कमुनिया के समुंदर की गहराइयों में कलीदी किरदार संभालने वाली पीला इंसान के मिनी अब्दोजेन सिरे आब कामिकाज ड्रोन्स गहरे पानी ग्रोह की शक्ल में काम करने वाले आलात वगैरह। दूसरी चीज इस अमल का भी मुशाहदा हुआ है कि तुर्की न सिर्फ ये सिस्टम तैयार करता है बल्कि बगैर पायलट सिस्टम के खतरात के खिलाफ इंतहाई जदीद हल भी तैयार करता है। ये अनिया है कि अंकरण इस मामले को महज ड्रोन्स की पैदावार करने की निगाह से नहीं देखा। तुर्की इस पहले तक कैसे पहुंचा और जरिए आपकी इकदाम इसे दूसरे मुल्क से किस तरह मुनफरद बनाते हैं। हम सवाल का जवाब DRT न्यूज के लिए दिफाई सनत के माहिर कोजान सेल्चुक एरकान के जायजों में तलाश करने की कोशिश करेंगे। एरकान के मुताबिक तुर्किया बेदारी के एहसास से गुजरा है। इस एहसास के मरकजी मामला शामिल है मुल्क की कौमी सतह पर किसी निजाम को तैयार करने का अहल बनना सिर्फ फख्र की बात नहीं बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक तकाजा भी है क्योंकि अमली मैदान से हासिल होने वाली हर फीडबैक हॉटस्पॉट पर हर मुशाहदा आपको अपनी मसनूआत को मजीद कामयाब बनाने का मौका फराहम करता है। जब आप गैर मुल्की ज़राए पर इंसार करते हैं तो आप इस साइकिल को कायम नहीं कर सकते। एरकान के अल्फाज दो टोक हैं। अंकरण ने दौर को क्लियर अरसे में बांध दिया और पोजिशन संभाल ली। जरे आप मौजू पर जाने से कब एरकान ने ड्रोन सिस्टम्स पर भी एक अहम नुक्ते को बयान किया है। एरकान के मुताबिक फील एक्सपो के दौरान इस शोबे में 3 माहदे तय करना मुस्तकबिल के लिए एक कवी इशारा है। अब आइए शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं, वो है शायद जेली अनासर। एरकान ने नुक्ता पेश किया है, जरे अब निजाम जो हमने पहले मॉडल या प्रोटोटाइप के तौर पर देखे थे अब अमनी शक्ल हासिल कर चुके हैं। वो सिर्फ माने पर पैदावार शुरू हो चुकी है, मुतलका कोतों के साथ महदे तय

पाके हैं, लेकिन हैजानंगेज मामला इस हद तक महदूद नहीं। इसने बाप में बुलंद मकामी पैदावारी शराखत दरचहरत जहर खान इसकी वजाहत यूं की है, ज़रियाब की एक मुख्तलिफ दुनिया है जो कि अभी तक पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुई। यहाँ कुछ पैदा करने के काबिल होना इंतहाई कीमती है। मिनी आपदों से गहरे पानी में कम विकास मिशन अंजाम देने वाले प्लेटफॉर्म से आप हमला करने की सलाहितों की इंतहाई बुलंदी तक ले जाने वाला निज़ाम हमारे